खुदा की बरकत तुम्हें सदा हासिल हो, उसकी मोहब्बत में कायम मसरूर रहो, आबाद रहे घर तेरा और तरक्की करे तेरी औलादें, भरा रहे हमेशा मखजन तेरा और सर सदा ऊंचा रहे, नाकाम हो सारे दुश्मन तेरे और बर्बाद उनकी साजिशें, हर मुकाम पर खुदा तेरे साथ रहे और उसके नूर में तुम मुकम्मल हो जाए, खुदा की नजर तेरी ओर सदा रहे और वो तुझ पर मेहरबान हो, उसकी हिफाजत में तुम महफूज रहे, चाहे जहां कहीं तेरा ठिकाना हो।